तो दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

0: खुमुस आवर उदास तुम क्या गए के रूठ गए दिन बाहर।
1: The Bollywood Session, your daily dose of Bollywood hits.
2: Hear it at 8 a.m. and 6 p.m. every day on SBS South Asian.

मुंह बदल के सानू फसल वांगू बर्बाद कीता। इस कयामत दे वक्त तो पहला मैं तेनू रब जिन्ना ही याद कीता। हदा ही टप गया है हुण तां तू, तेनू भी शर्म आवे तां चंगा है। हर कुड़ी दे हुसन ते मरण वालिया तू भी मेरे नाल ही मर जावे तां चंगा है। तू भी मेरे नाल ही मर जावे तां चंगा है।

non-stop Punjabi pop on SBS South Asian's Bhangra Hits.

0: of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: शनिवार 13 जून 2026 का दिन और SBS के हिंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपको अनीता बरार का नमस्कार. सबसे पहले कि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं उसके पारंपरिक उत्तराधिकारियों को स्वीकार करते हैं. SBS हिंदी कुलीन राष्ट्र के वारंजरी लोगों, उनके अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है. हम उन सभी मूल निवासियों, टॉरस स्ट्रेट आइलैंड के पारंपरिक उत्तराधिकारियों का भी सम्मान करते हैं जिनकी भूमि से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं. श्रोताओं, सप्ताहांत का दिन है लेकिन आज इस सप्ताहांत पर एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात भी करते चलेंगे. विषय है रक्तदान. बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन कुछ और जानकारी भी आपको देते चलेंगे रक्तदान के बारे में, क्योंकि कल यानी रविवार 14 जून का दिन समर्पित है रक्तदान के लिए. सप्ताहांत के दिन है तो बॉलीवुड समाचार भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और आज जो गाने हैं वो कुछ 60 के दशक के गाने हैं. इसके अलावा आप जीत सकेंगे मेलबर्न में होने वाले नाटक के डबल पास भी. लेकिन अभी सबसे पहले न्यूज फ्लैश. नमस्कार. शनिवार 13 जून के लिए यह है न्यूज फ्लैश और मैं हूं अनीता बरार. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी का कहना है कि ईरान और अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी लड़ाई खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौते के शब्दों पर सहमत हो गए हैं. उस डील में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की शर्तें शामिल होंगी. मंत्री ने संकेत दिया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी शर्तों पर बातचीत होगी, जिसे शुरुआती समझौते पर पहुंचने के 60 दिनों के अंदर फाइनल कर दिया जाएगा. सिडनी के कुजी बीच पर शार्क के हमले के बाद एक महिला जीवन और मौत से लड़ रही है. एक तैराक को काटने की खबर मिलने के बाद आज शनिवार सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया. आसपास खड़े लोगों ने महिला को पानी से निकाला और पुलिस और पैरामेडिक्स के आने से पहले फर्स्ट एड शुरू किया. बाद में एयरलिफ्ट करके उसे अस्पताल ले जाया गया. महिला, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है, उसको हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं. सोकुरूज कल वैंकूवर में तुर्की के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत करेंगे. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में एक मजबूत शुरुआत कर नॉकआउट में जगह बनाना पक्का कर रहा है. तुर्की को एक खतरनाक विरोधी माना जा रहा है, लेकिन सोकुरूज का कहना है कि वो अपने खेल पर केंद्रित हैं. कोच टोनी पॉफिक का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड स्टेज पर अपनी पहचान बनाना चाहता है. एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए हैं. जब उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर स्टॉक मार्केट में पहली बार आए तो उनके शेयर्स में तेजी आई. लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई, जिससे मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए. उनकी अधिकतर दौलत स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला से उनकी होल्डिंग से जुड़ी हुई है. इस कामयाबी ने दौलत में असमानता पर फिर से बहस शुरू कर दी है. कुछ नेता दुनिया के सबसे अमीर लोगों पर अधिक टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं. और NDTV से मिले समाचार के अनुसार भारत में पहली बार NDA की परीक्षा करने वाली देश की 14 महिलाएं एक साल की सख्त ट्रेनिंग पूरी करके आर्मी और एयरफोर्स में अधिकारी बनने जा रही हैं. इससे पहले NDA में महिलाओं के लिए प्रवेश खुला नहीं था. जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं की NDA में एंट्री शुरू हुई. देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और डुंगीगल एयरफोर्स एकेडमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। 9 महिला कैडेट भारतीय थल सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल हो रही हैं, जबकि हैदराबाद के टुंगीगल एयरफोर्स एकेडमी में 5 महिला कैडेट भारतीय वायुसेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन होंगी। अन्य समाचारों और समुदाय के समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक और हमारे वेब पेज sbs.com.au/hindi से जुड़े रहें। न्यूज फ्लैश समाप्त हुआ। न्यूज फ्लैश के बाद आइए अब बात कर रही हूँ रक्तदान की। ये शब्द अपरिचित नहीं है, किसी न किसी को कभी परिवार में या आपके जान पहचान में, किसी मित्र के परिवार में कभी ये बात तो हुई होगी कि खून चढ़ाना है, रक्तदान चाहिए। और ये एक तरह से जीवन और मृत्यु के बीच की वो घड़ी बन जाता है जहाँ पर हम कितने ही चिंतित हो जाते हैं। और फिर सबका खून सबको तो नहीं दिया जा सकता, उसके लिए बहुत सारा आपको उसको मैचिंग करनी पड़ती है, कंपैटिबल ब्लड को ढूंढना पड़ता है। अब जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी अलग अलग तरह की होती जा रही है, तो इस तरह की जो मांग है वो भी अलग अलग तरह से हो रही है। कह सकते हैं कि देश का जो ब्लड प्रोफाइल है वो भी बदल रहा है। तो ऐसे में रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम सबको सोचना भी चाहिए। तो इसी विषय पर सुनिए ये रिपोर्ट। जिन परिवारों को खून चढ़ाने पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके लिए डोनेट किया गया खून जिंदगी और मौत का फर्क हो सकता है। दूसरों के लिए डोनेट करने का फैसला, कल्चर, अनुभव और वो सिस्टम को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं, इस पर निर्भर करता है। SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। लाइफ ब्लड का कहना है कि देश भर में डिमांड को पूरा करने के लिए उसे हर हफ्ते लगभग 3,000 ब्लड डोनेशन की आवश्यकता है। लाइफ ब्लड अधिक से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों से रक्तदान करने की अपील कर रहा है और चेतावनी दे रहा है कि आवश्यकता लगातार बनी रहती है और नियमित डोनर के बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी के लिए किसी बीमारी के कारण डोनेट किया गया खून कभी कभार मिलने वाला इलाज नहीं है, ये जीवन का एक लगातार चलने वाला हिस्सा है। पर्थ में सेवा ऑस्ट्रेलिया से जुड़े रवि मरियप्पा नियमित रूप से रक्तदान और प्लाज्मा दान करते हैं और वो अपना अनुभव साझा करते हैं।
3: जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी ब्लड जो हमारे बॉडी में है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। अगर वही वेस्ट होने के बदले हम कुछ किसी और को मदद कर सकते हैं, उसका जो लाइफ जो बनता है, जो रेड क्रॉस बोलते हैं कि हर एक आदमी जब वो ब्लड डोनेट करता है वो 3 लोगों का लाइफ सेव करते हैं।
2: एडिलेड की डोनर इंदु धनसेकर के लिए खून देने की अहमियत तब स्पष्ट हुई जब वो भारत में बड़ी हो रही थी। वो कहती है कि वहाँ परिवारों से अक्सर उम्मीद की जाती है कि इलाज शुरू होने से पहले वो खुद ही डोनर ढूंढ लें। टीनेजर के तौर पर एक अर्जेंट अपील का जवाब देने के बाद उन्होंने खुद जाना कि डोनेशन से कितना अंतर पड़ सकता है।
4: Oh, absolutely, because just it was not just giving up my time and donating, it was more about giving someone hope and for someone to actually live again. So it was very personal for me.
2: और अब वो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा देती हैं। हालांकि अधिकतर लोग AB और O जैसे ब्लड ग्रुप से तो परिचित हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस बात पर असर डाल सकती है कि ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबल है या नहीं। इसी वजह से लाइफ ब्लड का कहना है कि उसे एक ऐसे डोनर पॉपुलेशन की आवश्यकता है जो आधुनिक ऑस्ट्रेलिया की विविधता को दिखाए। लाइफ ब्लड सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर रैना हिरानी ने एक अध्ययन किया है कि देश का ब्लड प्रोफाइल बदल रहा है।
5: So what we found in the research was that Australia is becoming more positive overall, and that group B and AB groups are becoming more common in our community. And these are the blood groups that are found more commonly in parts of Asia, India, Pakistan. So that's probably why we're seeing a change in the blood prevalence within Australian communities.
2: And Ravi Mariappa ka kehna hai,
3: jo bone marrow jab chahiye, wo wahi demography se hona chahiye. For example, jab if a person, wo jo aadmi Delhi ke ho ya Mumbai ke ho, wo अगर किसी एलिमेंट के डिजीज के है लाइक फॉर एग्जांपल कैंसर और उनको बोन मैरो चाहिए बिकॉज़ बोन मैरो इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सिर्फ वो डेमोग्राफिक पर्सन ही दे सकता है क्योंकि वो जो डीएनए है वो मैच होना चाहिए.
2: पैथोलॉजी सर्विसेज के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेम्स डेली का कहना है कि हाल के बदलावों से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोग ब्लड डोनेट करने के लायक हो गए हैं.
6: Earlier this year in April, we moved to a gender neutral assessment questionnaire so that the questions answered by donors are the same regardless of their gender. And that has meant that men who are in gay or bisexual long term monogamous relationships are able to eligible to donate red cells and platelets.
2: रक्तदान यानी कोई आर्थिक दबाव भी नहीं.
3: जो हमारा जो खून जो बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको वेस्ट करने के बदले हम किसी को जान दे सकते हैं. वो तीन जान वो सेव कर सकते हैं हमारा एक डोनेशन से. इट एक्चुअली सेव्स मेनी लाइव्स इफ यू आर हेल्थी एंड इफ यू कैन यू नो पीपल शुड कम मोर फॉरवर्ड. कोई लोग यू नो पैसा नहीं दे सकते अगर यू नो लाइक डोनेशन ऑफ मनी इज यू नो इज अ एफर्ट बट ब्लड डोनेशन एंड प्लाज्मा डोनेशन के लिए उतना एफर्ट नहीं चाहिए. सिर्फ आपको यू नो यू नीड टू बी प्रेजेंट देयर एंड कंट्रीब्यूट टू द यू नो इट्स अ नोबल कॉज.
2: SBS न्यूज के लिए हना हॉटसन और SBS हिंदी के लिए इस अंश को तैयार किया अनीता बरार ने. तो श्रोताओं आप सुन रहे थे कि रक्तदान कितना महत्वपूर्ण है. आपका क्या अनुभव है? आपने जाना कि कुछ भारतीय मूल के लोग इस दिशा में बहुत निरंतर तौर पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. आपने क्या किया है? आपने क्या कभी रक्तदान दिया है या आपके जान पहचान वालों ने कभी दिया है? और अब आप क्या सोच रहे हैं? मुझे अवश्य लिखें. 0439799767 पर मिलती हूँ इस अंतराल के बाद.
7: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: SBS Audio.
13: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
14: यही चाहो दादिया. चुनबे हाल में.
15: SBS Chill.
16: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
17: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
18: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
19: Far from the partisan politics.
20: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
21: sbs.com.au/audio.
2: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं आपको बताती चलूं कि आज भी आप जीत सकते हैं मेलबर्न में 20 जून को होने वाले नाट्य दर्पण द्वारा प्रस्तुति जो है उनकी शादी सिलेबस और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड. ये दोनों ही नाटक होंगे 20 जून को चैंडलर थिएटर मेलबर्न में.
15: तो आप जीत सकते हैं इसके डबल पास। आपने क्या करना है, बस अपना नाम लिखिए, अपना ईमेल भेजिए और साथ में कुछ कारण बताइए कि आप नाटक क्यों देखना चाहते हैं 0439-799-767 पर। तो आप अपने संदेश भेजिए और ड्रॉ में शामिल हो जाइए। और आइए अब बात करते हैं मुंबई की दो बहनों की, विशाला और कामाक्षी। उन्होंने एक नई पहल शुरू की है, म्यूजिकल बस। उसके द्वारा वो संगीत की शिक्षा देती हैं बच्चों को, वायलिन, पियानो, गिटार, यहाँ तक कि डीजे जैसे वाद्य यंत्र भी उनकी बस में है। और ये बस वो ले जाती हैं झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ पर वो बच्चों को संगीत की शिक्षा देती हैं। यानी इस बस में शोर नहीं बल्कि संगीत सुनाई देता है। अब इससे बहुत सारी आशा और उम्मीदें तो जुड़ी जाती हैं। आइए इस रिपोर्ट को सुनते हैं जिसे हमें भेजा है फैसल फरीद ने। मुझे लगता है शायद एक बार पहले भी आपने इसी तरह की कुछ रिपोर्ट सुनी थी, आज उसकी याद ताजा करते हैं।
21: कभी न कभी बस में यात्रा सभी ने की होगी, लेकिन मुंबई की सड़कों पर एक अलग तरह की बस दौड़ती है। इस बस का इंतजार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सैकड़ों बच्चे बेसब्री से करते हैं। इस बस में यात्रियों का शोर नहीं बल्कि मधुर संगीत की जीवंत ध्वनियां निकलती हैं। इस छनकदार बस से इन बच्चों की बहुत सी आशा उम्मीद जुड़ी हुई है। ये बस द साउंड स्पेस ऑन व्हील्स द्वारा चलाई जाती है। दो बहनें विशाला और कामाक्षी द्वारा सोची गई और बनाई गई ये बस वंचित बच्चों के लिए ये सीधे संगीत शिक्षा लाने की एक अनूठी पहल है। इस नवीन बस को पूरी तरह से सुसज्जित संगीत स्वर्ग में बदल दिया गया है। वायलिन, पियानो, गिटार और यहाँ तक डीजे जैसे वाद्य यंत्रों से भरा हुआ ये काफिला, ये युवा दिमागों को संगीत की दुनिया का पता लगाने के लिए एक अनोखा वातावरण प्रदान करता है। विशाला और कामाक्षी के द्वारा ये शुरुआत की गई है। इसमें संगीत शिक्षक उभरते संगीतकारों को उनकी संगीत यात्रा में मार्गदर्शन देते हैं, उनको सिखाते हैं। वो इन वंचित बच्चों को उनकी संगीत संबंधी प्राथमिकताओं का पता लगाने में मदद करते हैं कि किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी हुई है, और फिर उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए व्यक्तिगत दिशा निर्देश देते हैं। विशाला के अनुसार जो बच्चे उन तक नहीं पहुंच सकते थे या जिनके लिए संगीत की शिक्षा लेना नामुमकिन सा कार्य है, उनके लिए ये बस उनके पास पहुंच रही है। वो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास शिक्षा का ही अभाव है, तो संगीत शिक्षा के बारे में वो कहां तक सोचेंगे। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक ये बात छुपी रहती है कि जब भी संगीत बजते देखते हैं तो उनके पैर थिरकने लगते हैं। बात ये भी है कि सबके जीवन में कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत संगीत होता ही है। अब ये बस इन बच्चों के दरवाजे उन तक पहुंच जाती है। ये इस बात को भी दिखाता है कि संगीत को आप रोक नहीं सकते हैं, अगर आप उसको सही समय पर बच्चों तक पहुंचा दें तो बच्चे भी सीख जाएंगे। ये दोनों बहनें एक संगीतक परिवार से संबंध रखती हैं। इन दोनों बहनों ने इन झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। क्या है ये बस, कैसे ये शुरू हुआ, इन सब के बारे में विशाला इस संबंध में बताती हैं।
22: हमें लगा कि हम म्यूजिक को बच्चों के घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, हमारा ये मेन आइडिया था। क्योंकि जब हम म्यूजिक क्लासेस करते हैं तो जो बच्चे आ पाते हैं, जिनके पेरेंट्स भी सपोर्ट कर सकते हैं, जो यू नो कोई आपकी जॉब ऑफ पिकअप कर सकता है, तो हर किसी को मिलता है। लेकिन ऐसे बच्चों को जो कम्युनिटी में रहते हैं उनको ये ऑप्शन नहीं है। तो कोविड में जब हम ऐसे ही बच्चों से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो पता चल रहा था कि उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, तो इसीलिए उनको भी ये ऑप्शन देना हमें जरूरी लगा। इसीलिए हमने बस का आइडिया सोचा कि बस से ये बच्चे ये बस्ती के बाहर रुक सकता है और सब बच्चों को ये लाभ। एक्चुअली हम एक म्यूजिकल फैमिली से आते हैं, तो हमारा जो हमारे डैड म्यूजिशियन है, तो उनके साथ जैसे हम बने हुए हैं ना, वो सबसे मतलब इट वॉज वेरी स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल अभिनय थी। क्योंकि हम हर चीज म्यूजिकली करते थे, जैसे टाइम टेबल हो या खाना, सब साथ में मिलके गाकर म्यूजिकली करते थे। और हमें जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, एंड आई थिंक इसीलिए हमने ये सोचा कैसे म्यूजिक पहुंचा सकते हैं, ये हमारा एक रहा है।
21: बहुत साल पहले शुरू हुई ये बस, इसने संगीत की शिक्षा को गरीब बच्चों तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। ये दोनों बहनें पारंपरिक संगीत सीखने की जो एक ढांचा बना हुआ है कि जिसमें संगीत स्कूल, संगीत गुरु के पास बच्चे जाते हैं, उस ढांचे से अलग हट करके काम कर रही हैं। इसके लिए ये इन बच्चों तक पहुंच रही हैं, इस संगीत को मज़ेदार भी बना रही हैं, ये वही सिखाती हैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं या उनके अंदर उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत प्रतिभा है। लेकिन इस बस में क्या क्या होता है, ये बस कैसे काम करती है, कामाक्षी बताती हैं।
22: ये म्यूजिकल बस जो है ये हर एक अलग अलग जगह अलग बस्ती पे जाके ना बच्चों को म्यूजिक सिखाता है, बट ये सिर्फ म्यूजिक सिखाने के लिए नहीं है। म्यूजिक द्वारा ये बच्चे और क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, बेसिक एटिकेट्स हो, सोशल स्किल्स हो, ये सारी चीजें बच्चों को ये म्यूजिक के द्वारा सिखाया जाता है। और जो हमारे टीचर्स भी होते हैं ये भी वही कम्युनिटीज से आते हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पर वो एक कमाई कर सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं इस सैलरी के थ्रू।
21: कुछ लोग कहेंगे गरीब बच्चों को संगीत सिखा दिया तो उससे क्या बदलाव आ गया। बदलाव आता है साहब, इन बच्चों में आत्मविश्वास आ गया, थोड़ी देर के लिए सही इनके अंदर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया। इन बच्चों को शायद जीवन में बहुत सी खुशियां न मिल पाएं, लेकिन ये संगीत उनको थोड़ी देर के लिए कुछ न कुछ तो खुशी दे ही देता है। विशाला और कामाक्षी की साउंड स्पेस ऑन व्हील्स मुंबई के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करती है। प्रत्येक स्थान पर सप्ताह भर में एक बार उभरते हुए संगीतकारों का स्वागत भी किया जाता है।
22: तो ये अभी तो मुंबई में है और हम 6 बस्तियों में जा रहे हैं अभी, बट एज एंड व्हेन हमें फंडिंग मिलती है उस बेसिस पे हम इसको एक्सपैंड करेंगे। अभी तो हमारे पास 600 बच्चे हैं और जैसे हम एक्सपैंड करते जाएंगे वैसे बच्चों मतलब ज्यादा बच्चे ले पाएंगे हम क्लासेस में। जी जी, चेंज ये है कि उनको एक खुशी मिलती है, एक उनको एक यू नो एक होप है कि आज हमारा क्लास होने वाला है, हमारे इमोशंस को फील कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। घर पे जाके भी उनका टाइम अच्छी तरह स्पेंड होता है क्योंकि वो अपना म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं। और आई थिंक जो हमें फीडबैक मिली है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं बिकॉज उनको एक डिसिप्लिन भी मिल जाता है कि स्कूल से आने के बाद उनके पास एक और चांस होता है कुछ अच्छा करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका टैलेंट को थोड़ा बढ़ावा भी मिलता है, तो बच्चे काफी एंथुसियास्टिक और खुश लगते हैं।
21: अक्सर ये देखा गया है कि वंचित बच्चों में से ही कोई अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाता है, ये अक्सर हमने रियलिटी टीवी शोज में देखा है। शायद ये संगीत वाली बस इसी की एक कड़ी साबित हो और कोई न कोई वंचित बच्चा फिर से अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया के सामने अपना नाम रोशन करे। लखनऊ से फैसल फरीद।
15: तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कि किस तरह से दो बहनों ने बच्चों को संगीत की शिक्षा देने की शुरुआत की है। कोई भी शुरुआत किसी भी अच्छे काम के लिए हो अच्छा ही रहता है। अच्छा काम यानी रक्तदान। आपके संदेशों की मुझे प्रतीक्षा है 04397997677। मिलती हूँ इस अंतराल के बाद।
0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
23: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
23: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
15: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम और आपके साथ हूं मैं अनीता बरार. श्रोताओं, रक्तदान के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी तो हमारे श्रोताओं ने मुझे संदेश भेजे हैं, उनकी बात मैं आगे करती ही हूं. और जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि आज सोचा कि 60 के दशक के कुछ गाने सुनते चलते हैं, क्योंकि 60 का दशक बॉलीवुड का कहा जाता है कि गोल्डन एरा था. जैसे उन गानों के जो बोल थे, क्लासिकल धुन थी, और हमारे मशहूर गायक रफ़ी साहब और लता जी की बेहतरीन आवाज़, उन सब के साथ पहचाना जाता है. अब ये नहीं कि इनके अलावा दूसरे गायक नहीं थे. अगर सोचें तो 60 के दशक में वो गायक थे जिन्होंने उस दौर को सुनहरा बनाया. और वैसे उस दशक में शानदार ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट के माध्यम से म्यूज़िक को भी एक अलग तरह से उसकी एक पहचान बनाई थी. पारंपरिक जो क्लासिकल राग थे उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न चीज़ों का मिलान हुआ, जैसे कि वायलिन आया, एकॉर्डियन बजा, लैटिन रिदम के साथ आसानी से मिलके एक बड़ा ही शानदार सिनेमाई सा साउंड बनाया था उन्होंने. वो जो 50 के दशक में नहीं था, तो 60 के दशक में काफ़ी कुछ बदलाव आया. तो चलिए 60 के दशक का ये गाना सुनते चलते हैं और आगे बात करूँगी उन संदेशों की जो हमारे श्रोताओं ने हमें भेजे हैं.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
1: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
0: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: श्रोतो, रक्तदान की जब मैं बात कर रही थी तो हमारे श्रोता ब्रजेश जी ने संदेश भेजा है कि वो कई बार नियमित रूप से भारत में रक्तदान करते रहे हैं जब वो IIT रुड़की में थे, और इसके अलावा वो इससे काफ़ी अच्छी तरह से प्रभावित भी हैं। यानी उनका बहुत इच्छा होती है कि वो रक्तदान करें, और वो जानना चाहते हैं कि यहाँ यानी ऑस्ट्रेलिया में रक्तदान कैसे किया जा सकता है। तो ब्रजेश जी, आप किसी भी रेड क्रॉस शाखा से जुड़ सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं, और कई भारतीय मूल के संगठन भी समय समय पर इस तरह की ड्राइव करते हैं, तो आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। और कल यानी 14 जून का दिन तो खास इस दिन को समर्पित है रक्तदान के लिए, तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा अपनी उस नियमित रूप से जो आपकी आदत थी उसको वापस धर्म में लाने की। और हमारे श्रोता सुरेंद्र जी भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार 4-5 बार उन्होंने बताया है कि वो कई बार रक्तदान कर चुके हैं, और अभी वो जानना चाहते हैं कि उम्र के इस खास पड़ाव पर क्या वो रक्तदान कर सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, उसके लिए यही कहूँगी कि आपके लिए सही सलाह तो वही दे सकते हैं ना जो ब्लड लेते हैं। तो आप उन शिविर्स पर जाइए और उनसे पूछिए अगर आप स्वस्थ हैं और इस स्थिति में हैं कि आपसे आप रक्त दे सकते हैं, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। उम्र की मेरा ख्याल है ऐसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप अपने डॉक्टर से और हॉस्पिटल से जहाँ पर भी आप जाएं उनसे पता लगा सकते हैं। और श्रोताओं, अगर आप नाटक देखना चाहते हैं मेलबर्न में अगले शनिवार यानी 20 जून को, नाट्य दर्पण की तरफ से नाटक है शादी सिलेबस, और दूसरा नाटक है दिस टाइम यू डिसाइड। 20 जून को चैंडलर थिएटर में दोपहर 1 बजे से ये नाटक दोनों शुरू होंगे, एक सेशन में ही दोनों नाटक हैं। तो आपके पास अवसर है पास जीतने का, अपने संदेश भेजिए और लिख भेजिए कि आप क्यों देखना चाहेंगे नाटक या नाटकों के प्रति क्या आपका रुझान है। और जब तक आपके संदेश आते हैं, चलिए चलते हैं बॉलीवुड की दुनिया में और वहां की खबरें जानते हैं।
3: SBS रेडियो हिंदी के प्रोग्राम बॉलीवुड टाइम में आपका स्वागत है, मैं हूं नेहा। बॉलीवुड टाइम में सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर हलचल तेज हो गई है। नयनतारा के साथ उनकी पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी वाली इस एक्शन थ्रिलर की शूटिंग अब मुंबई के बांद्रा इलाके में होने जा रही है, जहां सलमान और नयनतारा कई बड़े एक्शन सीक्वेंस फिल्माएंगे। फिल्म में चेज सीक्वेंस, व्हीकल बेस्ड स्टंट, क्लोज कॉम्बैक्ट फाइट्स और भीड़ के बीच फिल्माए जाने वाले हाई वोल्टेज एक्शन सीन्स शामिल हैं। मनाली के बाद मुंबई और फिर जुलाई में हैदराबाद में फिल्म का अगला बड़ा शेड्यूल रखा गया है। कर्नाटक संगीत की महान गायिका MS सुब्बू लक्ष्मी की जिंदगी पर एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना MS सुब्बू लक्ष्मी का किरदार निभा सकती हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा इसे लेकर अभी अलग अलग जानकारी आ रही है। रश्मिका मंदाना को MS सुब्बू लक्ष्मी की बायोपिक के लिए चुना गया है। हालांकि कुछ समय पहले ये जानकारी आई थी कि रश्मिका या साई पल्लवी की जगह रुक्मिणी वसंत को इस रोल के लिए साइन किया गया है, लेकिन सबसे पहले चर्चा थी कि साई पल्लवी ये किरदार निभाएंगी। बहरहाल फिल्म मेकर्स की तरफ से अभी तक किसी भी नाम पर आधिकारिक पुष्टि नहीं दी गई है। वो कौन थे फिल्म का गीत लग जा गले एक ऐसा गीत है जिसका जादू दशकों बाद भी बरकरार है। एक समय ऐसा था जब फिल्म के निर्माता राज खोसला को ये धुन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। राज खोसला को लगा कि ये धुन फिल्म की जरूरत के मुताबिक प्रभावशाली नहीं है। मदन मोहन का मानना था कि ये धुन बेहद खास है और दर्शकों के दिलों तक जरूर पहुंचेगी। जब मदन मोहन ने दोबारा ये धुन गाकर सुनाई तो राज खोसला ने गीत की भावनात्मक गहराई और उसकी खूबसूरती को महसूस किया।

ने FWICE ने हाल ही में रणवीर सिंह के खिलाफ दिए गए असहयोग निर्देश के फैसले को वापस ले लिया है। हालांकि रणवीर और FWICE के बीच कानूनी विवाद अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच सिनेमा और टीवी कलाकार संघ की अध्यक्ष पूनम ढिल्लों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इस मामले में रणवीर सिंह सही थे, तो पूनम ढिल्लों ने कहा कि हमें इतना पता है कि वो एक निष्पक्ष इंसान है। वो ऐसे इंसान नहीं है जो जानबूझकर किसी को नुकसान या ठेस पहुंचाए। अगर किसी वजह से वो ये फिल्म करने में कंफर्टेबल नहीं थे तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया है, कई लोग ऐसा भी नहीं करते। मराठी फिल्म तिघी ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल किया। फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग हाउसफुल रही, जहां बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसकी दमदार कहानी और प्रभावशाली अभिनय की सराहना की। फिल्म को फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला। फेस्टिवल में फिल्म का प्रतिनिधित्व अभिनेत्री निर्माता नेहा पेनसे और निर्देशक जीजी विशा काले ने किया। क्या आप जानते हैं कि सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम भी इंडस्ट्री के सबसे उम्दा सिंगर्स में से एक रहे हैं। 22 साल पहले अगम कुमार निगम ने एक ऐसा दर्द भरा गीत गाया था जो प्यार में ठोकर खाने वाले आशिकों के दिल की आवाज बना था। साल 2004 में अगम कुमार निगम की सोलो म्यूजिक एल्बम लॉन्च हुई थी, जिसका नाम बेवफाई था। उसमें से एक गाना था शुक्रिया शुक्रिया। ये दर्द भरा गीत उस साल सबसे बेहतरीन दर्द भरे गानों में शुमार हुआ था।

0: करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित दोस्ताना 2 एक बार फिर अटक गई है, क्योंकि कास्टिंग के बाद अब फिल्म पर काम कर रहे निर्देशक अद्वैत चंदर ने इस प्रोजेक्ट से किनारा कर लिया है। अब निर्देशक के फिल्म से हट जाने से दोस्ताना 2 एक बार फिर अधर में लटक गई है। रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि अद्वैत चंदन का प्रोजेक्ट से हटना फिल्म के निर्देशन को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस से जुड़ा है। कॉकटेल 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और आते ही इसने ऐसा धमाका किया कि पूरी दुनिया इसकी चर्चा करने लगी। ये ट्रेलर पिछले कुछ सालों में किसी भी हिंदी फिल्म के सबसे टैग्ड ग्लोबल लॉन्च में से एक बनकर सिंगल है। YouTube के मूवी ट्रेलर चार्ट में इसने 8 देशों में नंबर 1 की कुर्सी हथिया ली और साथ ही US टॉप 10 में भी अपनी जगह पक्की कर ली। ट्रेलर ने US के मूवी ट्रेलर चार्ट्स में टॉप 10 में भी एंट्री मार ली है। एक वक्त हुआ करता था कि सिनेमा जगत में म्यूजिक एल्बम की क्रांति देखने को मिलती थी। आज हम आपको सिंगर अल्ताफ राजा के एक 28 साल पुराने कल्ट सॉन्ग के बारे में बताने जा रहे हैं, तुम तो ठहर परदेसी। उसे 1998 में रिलीज किया गया था। अल्ताफ राजा की मधुर आवाज में तुम तो ठहर परदेसी गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि उस दौर में ये गीत हर जगह सुनाई देता था।
1: तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे।
0: बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस और सिंगर परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी जिंदगी के एक नए और बेहद खूबसूरत फेज को एंजॉय कर रही है। एक्टिंग के साथ साथ अपनी सिंगिंग से लोगों का दिल जीतने वाली परिणीति अब अपने फैंस के लिए एक अनोखा और बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट लेकर आ रही हैं, जो उनके क्रिएटिव जर्नी को दिखाएगा। दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि जल्द ही अपना पहला भक्ति गीत रिलीज करने जा रही है। परिणीति इससे पहले भी अपनी फिल्मों के गानों और लाइव कॉन्सर्ट्स में अपनी सिंगिंग का जादू बिखेर चुकी है। फिल्म डकैत एक प्रेम कथा ने सिनेमा घरों में सफलता हासिल करने के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर भी दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बनकर नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अड़ीवी शेष ने एक बार फिर कंटेंट आधारित फिल्मों के भरोसेमंद अभिनेता के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। प्राइम वीडियो पर नंबर 1 स्थान हासिल करने के बाद डकैत एक प्रेम कथा ने अड़ीवी शेष और मृणाल ठाकुर के करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ दी है। कल्पना कीजिए कि कोई गायक सुबह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में प्रवेश करता है और रात जब बाहर निकलता है तो उसके नाम 21 पूरी तरह से रिकॉर्ड किए गए गाने होते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि 8 फरवरी 1981 को बेंगलुरु में रचा गया एक ऐसा इतिहास है जिसे महान गायक SP बालासुब्रमण्यम ने सच कर दिखाया था। उन्होंने एक दिन में 19 तमिल और 16 हिंदी गाने रिकॉर्ड करने का भी बेजोड़ कीर्तिमान स्थापित किया। SP बालासुब्रमण्यम ने संगीत की कोई औपचारिक शास्त्रीय शिक्षा नहीं ली थी। साल 1981 में SP बालासुब्रमण्यम ने फिल्म एक दूजे के लिए से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म के गाने तेरे मेरे बीच में, कैसा है ये बंधन अनजाना ने उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया।

0: बॉलीवुड टाइम में आज बस इतना ही, बाय बाय।
1: श्रोताओं, बॉलीवुड की खबरें तो आपने सुनी, और इस बीच में हमारे श्रोता कुमार जी ने बताया है कि उन्होंने कैनबरा में बस डोनर बस भी देखी है, कैनबरा में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के सामने। और कल चूंकि ब्लड डोनेशन का डे है खास तौर से, तो मुझे लगता है कि हर जगह आपको ये बसेस या किसी भी तरह का आपको इस तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, और अस्पतालों वगैरह में भी आप जाकर रक्तदान कर सकते हैं। और श्रोताओं, आज एक खबर है ना कि एलन मस्क ट्रिलियनेयर बन गए हैं। तो देखिए, हम लोग बात करते हैं लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, शायद खरबपति भी बन गए। तो ये कितने होते हैं हिंदी में, आपको मालूम है ना कि हिंदी में ट्रिलियनेयर को क्या कहा जाएगा? उसमें कितने लाख होंगे या कितने अरब होंगे, जरा मुझे बताइए तो सही। और आपसे मिलती हूँ, नहीं, आपसे मिलने से पहले क्यों ना एक गाना भी सुनते चलें, और गाना ऐसा कि अगर कहीं अंताक्षरी हो रही हो और अक्षर आए आप पर, तो कौन सा गाना सबसे ज़्यादा याद आ जाता है एकदम से?
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
3: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
1: SBS पर आप सुन रहे हैं हिंदी कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ अनीता बरार। श्रोताओं, इस अंतराल से पहले आपको गाना सुनवाना चाहती थी, वही गाना जब अंताक्षरी की बात कर रहे थे और आप पर गाना आ जाए, तो एक गाना बहुत जल्दी से हमारी जुबान पर आ जाता है, तो आप सुन लेते हैं उसको।

श्रोताओं, 60 के दशक की बात कर रहे हैं और हमारे श्रोता कुमार जी ने याद दिलाया है फिल्म गाइड के बारे में। जी हाँ, गाइड अपने आप में एक अलग ही तरह की फिल्म थी, उसके बारे में जितना कहें शायद कम रहेगा। लेकिन मैं बात कर रही थी कि 60 के दशक में कुछ एक अलग बातें भी हो रही थी, जैसे कि पिक्चराइजेशन में जो था एक नया पन आ गया था। गाने के सीन सिर्फ एक कमर्शियल ब्रेक की तरह नहीं बल्कि कहानी कहने का जरूरी हिस्सा बन गए थे, जैसे कि गाइड। और इसी पे याद आता है डायरेक्टर विजय आनंद, जिन्होंने गाइड जैसी फिल्म बनाई थी और गानों को स्क्रीन पर शूट करने के तरीके में जैसे उन्होंने क्रांति ला दी थी। उन्होंने मुश्किल जगहों पर कैमरा डालना, आउटडोर लोकेशन और ज़बरदस्त कोरियोग्राफी का इस्तेमाल करके म्यूजिक को देखने में दिलचस्प बनाया। जैसे कि याद कीजिए ये गाना।

तो ये कहना था, क्या आपको ये फिल्म याद है? इसके कलाकार याद हैं? अगर याद हैं तो मुझे अवश्य लिखिएगा 0439-799-767। और आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेलबर्न में 20 जून को होने वाले नाटक के पासेस जीतना चाहते हैं तो बस आप मुझे संदेश भेजिए कि आप नाटक देखना क्यों पसंद करते हैं और क्या आपने कभी कोई नाटक देखा है उसके बारे में बताइए। और मैंने आपसे पूछा था लेकिन इस बारे में कोई जवाब नहीं आया कि ट्रेलेनेर यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे? ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये तो शायद आपको पता होगा, तो जरा जोड़ के बताइए कि कितने लाख हैं, कितने अरब हैं, क्या होगा हिंदी में इसको कैसे कहेंगे? तो मैं आपके संदेश की प्रतीक्षा तो कर रही हूँ, ज़रूर बताइए। और हमारे श्रोता राजेंद्र वोहरा जी ने अपनी पसंद का एक गाना लिखा है, तो राजेंद्र जी कोशिश रहेगी कि अगले किसी कार्यक्रम में, अधिकतर शनिवार के कार्यक्रम में शामिल करने का पूरी कोशिश करूंगी। और अभी चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये गाना सुनते हैं। आपको इसके शायद कलाकार भी याद होंगे, किस कलाकार पर ये गाना फिल्माया गया हो और ये कौन सा दौर था वो भी आपको याद ही है, क्योंकि आज तो मैं 60 के दौर की बात कर रही हूँ। तो ये गाना

श्रोताओं, आप सोच रहे होंगे कि 60 के दशक का ये दौर, इसमें आज का यानी ये 2000 के बाद का दौर कैसे शामिल हो गया। ये तो मेरे लिए भी बहुत ही हैरानी वाली बात थी, क्योंकि जो हमारे पास लाइब्रेरी में रिकॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि इसमें रीमिक्स भी किया गया है। तो ये मेरे लिए भी एक नया तरह का तजुर्बा था मेरे लिए। और हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि ट्रिलियन इसमें कितने क्या होता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो हमारे श्रोता ब्रिजेश जी ने हमें लिखा है कि ये 1,00,000 करोड़ है। जीरो कितने होते हैं इसमें, हमें ये सोचना पड़ेगा। अब मैं ऐसे ही देख रही थी, ये 1,00,000 करोड़ होगा कि 10,00,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा, ये कुछ सोचने वाली बात लगी है, क्योंकि हिंदी में इसको 10 खरबपति भी कहा जाता है। तो जरा एक बार फिर से सोचिए कि ये 1,00,000 है या 10,00,000 है, खरबपति है या क्या है। खैर, जीरो कितने होते हैं वो मुझे मालूम है कि इसमें 12 जीरो लगे हुए होते हैं। तो और हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने अपने संदेश भेजे हैं। गाने को आगे बढ़ाती हूँ, ये वाला गाना भी सुनते चलते हैं।

यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ, ये बेमिसाल हुस्न।

श्रोताओं बताती चलूं कि जो गाना हमने आपको पहले सुनवाया था वो था फिल्म तेरे घर के सामने का, देवानंद और नूतन पर फिल्माया गया था और एक अलग ही तरह का उसका पिक्चराइजेशन था। आप सबको याद ही होगा कुतुब मीनार के अंदर इस गाने को फिल्माया गया था और अपने आप में एक मिसाल बना था। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ संदेश आए हैं, जो ड्रामे के लिए नाटक देखना चाहते हैं तो आप सब लोगों के नाम ड्रॉ में चले जाएंगे किसी भी लकी विनर के साथ में। कल आपसे संपर्क तो किया ही जाएगा और आपसे मुलाकात होगी अब आगे अगले सप्ताह में किसी भी कार्यक्रम में। तो संदेश मेरे पास आ रहे हैं लेकिन शायद समय नहीं रहा मेरे को बताने के लिए कि किन हमारे श्रोताओं के संदेश हैं। तो बस आप ये जानिए कि इस गाने से 60 और 70 के और 80 के दशक की जो हम यादें ताज़ा करते रहते हैं, करते रहिए। और आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह। अनीता बरार का नमस्कार।

मेरी गल कर ले, प्यार मेरे नल कर ले, काम सारे गल कर ले मेरे यार, तू मेरी बांह फड़ ले।

Yo, Honey Singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या

लिया तेरे हुस्न के पानी में बेबी मैंने अपना मुंह धो लिया ऐसे तू नाचे जैसे बाग में नाचे मोरनी नजर पहली में दिल ले गई तू दिलों की चोरनी

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खबा खबा।

घर कैसे जाएंगे, रात से हो गया दिन, पी के वोडका कोला जिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली तड़पे पानी बिन, दिनक दिनक धिन।

क्योंकि तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यूं तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: SBS South Asians Desi Dance Party.
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: तू डांसिंग फॉर एंड स्टाइल
1: स्लो डाउन बॉयज़।

0: is South Asian.
1: Check it.

0: खुमुस आवर उदास तुम क्या गए के रूप गए दिन बाहर।
1: SBS साउथ एशियन।
2: कमाल है, कमाल है।

Here we go. Hit. After hit. After hit. This is SBS South Asian.

लूटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह, तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay.